समझदार सोझी वाले एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दिया जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड्डे स्वाद भर छड्डे अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जांदा है पूरा ध्यान पर जे वो आवाज बेसुरी होवे ते कन्ना चुंगला भी दे लैंदा अण पौंदा शोर होवे ते नहीं भी बर्दाश्त होंदा इसे तरह सुंघण दी शक्ति कदे बदबो भी लैंदी ते दुखी भी हुंदी खुशबू नाले सुखी भी हुंदी

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण छलो मार्ग गोविंद। केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी, ओदे गुण गाउणे। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सके हम बालक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हों की गल करते, गुरसिखा की गल करते, भगतों की गल करते, संतों की गल करते, जिन्होंने प्यार किया, प्यार किया तो फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपन की गल, जब भरपूर प्यार करना तो फिर तनो मनो प्यार करना। तुसा वेखिया है सुहागना पति नाल मिठा बोल दिया ने, ते पति दी प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी कर दिया, पति दी प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तो पौड़ियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है। शरीर करके भी पति दी प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील ने। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कड़ी लोड़ है, घर बैठा रवे, गुरुद्वारे आउण दी थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा बल तो होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया, मन किते मकान ते रह गया।

ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ, ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਲਾਹ ਬਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਫਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੱਤ ਕੀ ਪੰਧ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ,
ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण दी रहनी दी कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनु बचा सकता है। ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा। मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोकां दे औगण कढ़ के ते सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजियां दे औगण कढ़दा रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवे। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानदे हो साहिबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी। बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है कि एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिली। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वो कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो। वह कहन लगे तेनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर लई महाराज इत्थे भी आउंदे ने दर्शन बख्शदे ने। सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियां नू आके नाम जपण निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलदा रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बारी मैनू वेख लै। सियाणियां ने बहुत किया तेनू वैदां ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी। उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते लै आए। दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरां ने कहा विश्राम करना उन्हें विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाण विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना से कुछ व्यवंता होणगियां पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने। यह कह लगा मैनू इथे प्यार रहन दिओ जिस वेले वह बाहर निकलणगे मैनू एक बार वेख लैण फिर मेरा दुआ दारू शुरू करिया है। आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पुछिया क्यों बई की गल है दरबार ने दस्या महाराज रोगी आया वह कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो। महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना पिया पिया सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया सी वैदां हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया सी महाराज नूं वेखदिआं सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने कहा प्यार हो महाराज ने भी इशारा कीता मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहुणा है कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहुंदा सां तुसीं मैनूं वेख लो। साहिबां ने मुस्कुरा के ओही गल कही भलिआ लोका तैनू वेखण के वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए ते हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कहिड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड़ वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदां हकीमां नूं कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते वह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वह जिहड़े मेरे अंदर दे रोग ने वह वैदां ते हकीमां नूं नजर नहीं आउंदे। साहब जी वह तो तुसी देख सकते हो इस करके क्या पहला मैनू अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा ते ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया ते गल की साहब हस पे कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होने के दिन आ गए ये सच करके जानना जिस वेले मनुख का अपने आप ते ध्यान ही पै जावे ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है। धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंद न करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मुंह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दीआं बुराईआं कढ़ीआं पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देगा लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असी धन भी लोकां दे घरां दा वेखने वडियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बणै काम क्रोध तन वसै चंडार ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर ते बंदा कातल ते खूनी उदो बनता है जदों ए लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ए खराबियां बंदे कोलों बहुत गुणा कराउंदियां ने साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनूं नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहण दिता तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि ओ ता लोक जिन्हां दी गल महाराज ने जिक्र कीता इत्थे ओ लोक ता बाहरों भी गंदे रहिंदे सन सफाई बाहरले जीवन दी भी नहीं रखदे बाहरों भी मर्यादा नहीं रखदे पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संतां वाला वेस धारण कर लिया साहिब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग विच आया कि मैं लोकां नूं फसावां किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोकां नूं किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसानां वाला साधां वाला फकीरां वाला वेस है हौ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोकां नूं ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप सियाणा बणदा वी बहुत हां मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरियां रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर ओहदा वी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उस नूं हराम खोर कहिंदे जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उस नूं प्राप्त है ओहदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि मैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवे मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक दा ए शब्द साहिबां दी ए बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नूं जे अपने अंदर ए रोशनी मार के अपने गुनाहां ते ध्यान पाउण दा ख्याल आ जावे तां साहिब पातशाह पावन बाणी च कहिंदे ने

माता जी दा कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई। साहिबजादे असह ते अगह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए। धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे न किसे ने इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा की अत हुई धरती ने पुकार की थी। ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड्डा काम यह कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं। सानू सारिया नू बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतिया अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी धन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करें।

चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नाम दा दे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है। जे परमात्मा रूपी नाम दा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे, चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिल के इन्हां तुकां नूं पढ़िए कोई रसना खाली।

ऐसा गुर सिख जिसका जीवन सेवा सिमरन परपकारी है, भाई साहब कहते हैं कि बेशक उसनू कह दियो जेड़े जोड़े उसने पहरे हैं वो उतार देवे, पता नहीं किस चमड़े दे होंगे। आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिख नू पहना दियो जिसका ऐसा जीवन है। गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला, शब्द सुरत सावधान है बिन गुर शब्द ना सुने ही बोला। जिथे गुरु की बाणी दी विचार होंदी है झट पहुंच के कन दे के सुनदा है, ते जिथे निंदिया चुगली हो रही है उथों कन्नी कतरा जांदा है, क्योंकि निंदिया चुगली सुनन नाल पुन सड़ जांदे हन। सत संगत विच बह के गुरु की बाणी सुनन नाल पुन वध जांदे हन। इसलिए गुरु के सिख दा ऐसा जीवन भाई साहब कहंदे हन, बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े ऐसे गुरसिख नूं पहना।

पर जद हुकम आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पे ना पत्नी दा ख्याल ना बच्चियां दा ना रिश्तेदारां दा ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नु मिली लवा नहीं परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नु मिलन दा समा नहीं मिलदा हुक्म बड़ा डाढ़ा है आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

राज मिल जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह कहते ने घर अपना घर शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार घोड़े लाल लाख बयानी हाथी घोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्हां दे पति मर गए, जिन्हां वापस नहीं आना। उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने, तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतण, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने, ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ।

नींदर नहीं आंदी, सारा संसार सौंदा है, पर मैं किवें सौवां। हाली ते आस सी तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है, पर तू ता विचे ही साथ छड़ गए, तू नहीं ता साहब जी कहंदे ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगदा है। ते ओ मां जिदा पुत ना रवे ओदा जीवन कैसा, कहंदे ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर, अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया, दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है, तू हिंदुस्तान दा बादशाह है, जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह, अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद कर दी सलाम कर दी, तुसी क्यों रोंदे। अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही, कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले ता बहुत ने, पर इको ही सी मेरी मां जेड़ी क्या कर दी सी वे अकबरा, हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी, क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी, जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है ओ दुनिया दी।

इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्या करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है, ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोत ए भी कहंदा है मैं जिनू चाहवा ओनू मार सकदा, जिनू चाहवा ओनू छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है हुक्म आ जांदा है।

पर उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं क्योंकि रोण का लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया रोना नहीं। परमेश्वर का कीर्तन करना है सिमरन करना है ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नू परमेश्वर अल्लाह दे चरणा विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने पाई अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना वराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना दुनिया विच रहना है दुनिया नू नाशवान समझना है दुनिया दे काम भी सारे करने ने पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना किसे ना ठगी नहीं करनी जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहिब जी कहंदे ने कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठाए पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साज नाम निस्तारा एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आप सुन के अपने मना विच धारिए एक दिन मरना है ताकि जीवन सफला करके जाइए।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक पैतलिया।

कोई अवर ना सूझे हर नामो अंत छड़ाता, क्योंकि जीवन तो सुख देंदा ही देंदा है, जीवन तो बाद कौन बाह फड़ेगा, कौन छड़ावेगा सवाए प्रभु दे नाम दे। ते जे सतगुरु ने इस नाम दे लड़ लाया, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, धन धन गुरु का पिता माता, वो आप दा धन उहदे माता पिता भी धन। हुण सतगुर अपने को सदा नमस्कारी, मैं उस सतगुरु नूं सदा नमस्कार करा, जित मिले हर नाम मैं जाता, जिसने जाग अंदर कुदरत वरताई। आम तौर ते महापुरुषां ने वडियाईयां प्राप्त करके बख्शां लैके अपनी पूजा करवाई, अपना सत्कार कराए, लेकिन धन गुरु नानक ने निरंकार नाल जोड़िया। आ जिहड़ी पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही है, तरी निशानी कौंस दी, मक्के अंदर पूज कराई, मक्के अंदर गुरु नानक दी एक खड़ाम पई, हाजी जांदे ने हज करदे ने इस खड़ाम नूं ही मत्था टेकदे, लेकिन गुरु नानक ने नहीं कहा मेरी खड़ाम नूं मत्था टेकना। गुरु नानक तां मक्के अंदर भी ये कहंदे ने प्रभु दी पूजा करो, उन्हां तां प्रभु दी पूजा कराई। ये गल वखरी है कि प्रभु नाल जोड़न वाले दी खड़ाम दा भी सत्कार अज तक हुंदा चलिया आ रहा। जिथे जाए जगत विच एक मक्के दी गल की, बाबे बाज ना खाली जाई, संसार ते जिथे भी गुरु नानक दे चरण पए ने लोकां दे जीवन बदलदे चले गए। जेड़ा जेड़ा भी गुरु नानक दे सामने आया उहदे जीवन च तब्दीली आउंदी चली गई, नाम दे सदका गुरमत दे सदका। घर घर बाबा पूजी है, हिंदू मुसलमान गुआई, घर घर च गुरु नानक दी जय जयकार हो रही है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान चाहे कोई होर मत वाला।

मेरे मालिक रहमत कर ते मैनू ओना दे चरणा दी धूड़ प्राप्त होवे जो दिशे को सिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुरसज्जन से मिलाए जी तू जिथे मिलिया मेनू भी मिला जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखां जिहड़े तुरे होए ने पहुंचे होए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय कीते होए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जिहड़े ते ओह जिहड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहिब कहिंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल ओह की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन विच फर्क है जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देंदे आ लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब हुंदा है चंगा वेला सवेला सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती दी गल सोचदा है ना वह कवेला कर बैंदा सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़दे ते जिहड़े इस मार्ग ते तुरे होए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहिंदे ने ऐसे लोग जिहड़े गुरु महाराज ते अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करदा है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवाई कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तो निछावर कर दे वारने कर दे कहिंदे ने अग्न जलाए हुण पीसन पिसाए तेह चक्की च पी दे अग च भुन दे लै उड़े पौन होए अनेक प्रकारिये तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दे उस हवा विच मेरे शरीर की खाक उड़ जावे जिथे कहिंदे ने जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात सवेरे सवेरे जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वाल तुर के आउंदे ने जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम तो डारी है मेरे शरीर की पसम जेड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दिओ मेरे शरीर नूं सुआह करके पसम करके तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे उन्हां रस्तियां ते पैदल चलण वालियां दे चरणा नाल मेरा प्यार बनिया रहे मेरी लिव लगी रहे दया के दयाल मोहे पदक उधारीए ताकि उन्हां दे चरणा दी खाक प्राप्त करके मेरे शरीर दी खाक उन्हां दे चरणा दी छोह प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा मेरा पापी दा उधार हो जा कैसी प्यारी जीवन जाच है उद्दम करे पलके प्रभाती अमृत वेले उठे उद्दम करे आलसी ना रह जावे क्योंकि आलसी तो निरा रोगी किसी पासे भी कामयाब नहीं हो सकता गुरसिख जीवन दे हर मैदान विच सफलता नूं प्राप्त करने वास्ते उद्दम करदा और महाराज दे पावन बाणी च सुचेत कराया उद्दम करेंदिया जीओ तू कमावदिया सुख पुंज ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत उद्दम करके जी उद्दम करके कमाई भी कर ते ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी पर पा लै इधर भी मिलाप कर लै इस तरह तेरा जीवन एक चैन वाला सुख वाला निश्चिंती वाला हो जाए इशनान करे अमृत सर नहावे शरीर करके भी शुद्ध हो ते जिथे बाणी दा अमृत वसदा हो उस सत्संगत दे अमृत सरोवर विच आके मन भी डुबियां लवा उपदेश गुरु हर हर जप जापे फिर गुरु का उपदेश श्रवण करे उसके अनुसार ही उतर गए वाहेगुरु नाम सिमरन करे उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम अमृत छकने ना पंजा प्यारिया वो जिसले कहिंदे ने गुरसिखा अज तो तेरा जन्म गुरु नानक दे घर विच होया कलगीधर पातशाह दे घर विच होया तेरा पिता गुरु कलगीधर तेरी माता साहिब कौर तेरा जन्म केसगढ़ साहिब दा ते वासी तू आनंदपुर साहिब दा रही चल भावे जिथे तेरा दिल करदा किस नगर च रहो तेरी सांझ आनंदपुर वाले नाल बनी हो बल्कि तेरा हिरदा उस आनंद दे
नगर दा वासी होवे जिसनू किया गया बेगम पूरा शहर को नाओ तू खांदो नहीं ते ठाओ तेरी मानसिक अवस्था आनंद वाली हो तू उस दे उस आनंद वाली नगरी दा भी वासी होवे जिथे भगतां दा वासा हुंदा संतां दा वासा उस आत्मक अवस्था दी उच्चता नू तू प्राप्त हो उथे नाले भी कहंदे गुरमुख तेरे ते अज तो ए पाबंदी आयद हो गई। ये गल समझ लेना जेड़ा बंदा पाबंदियां अंदर नहीं जींदा वो आप उतरा डिसिप्लिन नू ना धारण करना घरां दा डिसिप्लिन है स्कूलां कालजां दा डिसिप्लिन है फौजां दा डिसिप्लिन है बाजारां कारोबारां दा भी अपनी किस्म दा एक डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन तो बाहर जाओ कानून आग्या नहीं देता। धर्म दे संबंध च ऐसा लोगों ने समझ लिया जो मर्जी करो ऐसी गल नहीं चले गुर सतगुर का जो सिख आखाए वह सिखी दे डिसिप्लिन च चले गुरसिखी दे जो नेम ने और वो नेम तुहानू पता ने सारियां नू पता है पंज प्यारे हुक्म देणगे अज तो तू पंजां ककारां दा रह धारनी होना इन्हां पंजां ककारां दी हद तो बाहर नहीं जाना इस डिसिप्लिन तो बाहर नहीं जाना और चार बजर कुरैतां दी उस लकीर तो भी बाहर नहीं जाना चार बजर कुरैतां तो बच के रहना है पंजे रहतां नू पूरी तरह धारण करना है ना केवल बल्कि ईमानदारी नाल धर्म दी किरत करके कमाउणा है गुरु दसवंध देना है परोपकार हित जूझदे रहना है अपने अंदरों उठदे विकारां नाल जूझदे रहना है वो जिहड़ी तुक आपां पढ़ने रहत नामे च खालसा सोए जो चढ़े तुरंग खालसा सोए करे नित जंग बंदा सोचदा है भी ओह दा समां सी जिसले घोड़िया ते चढ़ के गुरु ते सिख जंग करदे सन ते महाराज दे लिखाए हुए रहत नामे तां त्रैकाल ने हुण जे घोड़े नहीं ते जंग नहीं ते फिर दा मतलब है सिख की करे जे नहीं करदा घोड़े ते नहीं चढ़दा जंग नहीं करदा ते फिर सिख तां बेकार हो गया सिख सिख ना रहा ऐसी गल नहीं है ओ जंग बाहर नहीं है बुराई नाल जंग है लेकिन बुराई तां अंदर भी चलदी पई जिसले बंदा इधरों बाहरों वेला होवे साहिब कलगीधर पातशाह कोल सिखां ने सवाल कीता सी महाराज हुण तां कोई लड़ाई झगड़ा जंग कोई नहीं रह गया की करिए अजकल की करिया करिए साहिब कहण लगे युद्ध जारी रखो हैरान हो गए कहने लगे महाराज हुण आपस च लड़ीए युद्ध किहदे नाल जारी रखिए लड़न वाला दुश्मन ही कोई नहीं सारे भगौड़े हो गए छड गए भज गए हुण किहदे नाल लड़ीए युद्ध जारी रखिए कैसा युद्ध वैसे महाराज ने ये भी रोजाना दे नितनेम च शामिल कीता सी रेजाबाजियां करो तलवारबाजियां करो शरीर की कसरत भी करो शस्त्र धारनी होके शस्त्र की विद्या प्रवीण होने का जतन भी जारी रखो लेकिन इथे जिसले महाराज ने कहा युद्ध जारी रखो महाराज किहदे नाल लड़ीए धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध विचारे बाहरला युद्ध भी चित दा युद्ध भी वो केड़ा युद्ध है महाराज कहन लगे अंदर तुहाडे ते थोड़ियां धारां पैंदियां ने कदे काम हमला करदा है कदे क्रोध कदे लोभ मोह हंकार इन्हां नाल अंदरों ओ ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे ज्ञान दा शस्त्र लैके अंदर दी बुराई नूं वढ़दे चले जाओ अंदर दी भी सफाई जारी रखो युद्ध अंदर भी चल सकदा है खालसा सोए जो चढ़े तुरंग जो मन दे घोड़े ते सवारी करे मन नूं काबू च रखे डिसिप्लिन च रखे सिक्खी दे डिसिप्लिन च रखे मन नूं शरीर दा डिसिप्लिन है कि रहतां दा धारनी होवे रहतां तो बचिया होवे मन दा डिसिप्लिन यह है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे काबू ना इस घोड़े नूं लगाम पा के बाणी अनुसार खालसा सोए करे नित जंग बुराइयां नाल अंदर भी बुराइयां नाल जंग करे बाहर भी जंग करे साहिब कहंदे ने ऐसा गुरु का सिख उपदेश गुरु हर हर जप जप जापे सब किल विख पाप दोख लै जावे जिसने गुरु के बचना अनुसार एक डिसिप्लिन च जीवन बतीत करेगा ना पाप धोते जाणगे दोष खत्म हो जाणगे दोख कहंदे ने दोष खत्म हो जाणगे जीवन चो बुराइयां निकल जाणगी जो सांस गिरास ते आए मेरा हर हर स्वास अंदर आवे स्वास बाहर जावे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਤਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਣ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦੇਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਗੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲਵੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਦੁਬਦਾ ਪੰਨੀ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਚਵੰਗਣ ਮੰਨੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੈ ਸਭ ਕੀਤਾ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚ

दास जी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की हुई। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे अमृत सर विच जोत जगावे। कहंदे ने सोडी पातशाह रामदास जिन्हा नू सतगुरु जानिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हा ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नू अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भाई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समय विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नू जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा कि जाओ भाई हुण इत्थे बड़ी सेवा हो गई गोइंदवाल, हुण जा करके दरबार साहब अमृतसर दे विच जा करके नाम भी जपो ते फिर ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके। हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे उथे हर एक दा सन्मान हो सके। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने मानो उथे प्यार नाल प्रेम नाल इतना सिमरन कीता के मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते पाई साहब पाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। भई कोई होवे गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी तरह जेड़ा आप जुड़िया होवे परमात्मा दे नाल ते फिर दूसरे ते करे किरपा ते दूसरे नू भी शब्द दे नाल जोड़ देवे। फरमान आउंदा है समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी किरपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो। भाई जेड़ा आप जुड़िया होवे परमात्मा नाल ते फिर दूसरे नू परमात्मा दे शब्द नाल जोड़ देवे। पाई साहब कहंदे हन मानो उसनू सत सोने दे मंदर